तीर्थ उनो युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे, आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे हां यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउणगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजिया ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए, सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तो अपनी राह तो चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आई रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां अखरां।

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

काल खाए कि छत होंदे, काल खाए कि छत होंदे, नानक रा पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, मान होंदे होई नी माणा। हां तिसू विचों आ रिया, हां तिसू विचों आ रिया, तान होंदे होई नी ताणा। हां तिसू विचों आ रिया, छड़ सियाणप होई आणा। हां तिसू

कीमत अदा नहीं हो सकती। जिस वस्तु दी ओ मिल जावे तां उसनू प्राप्त कहिंदे हन। आख्या तू 84 लख जूना विचों, त्रिगड़ जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई, तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है। ते एहो ही तेरी बारी है, एही वक्त है, तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे, जन्म मरण तो रहत हो जावे। ते जे ना कीता तो फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू, इसलिए आप बख्शिश करदे हन।

रूप होने के नाते इको ही हैं, पर फर्क इतना है कि समुंदर बहुत विशाल है ते बूंद एक थोड़ी छोटी जही चीज है। बूंद जिवें थोड़े पानी विच थोड़ा होन करके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जिस तरह एक दरिया पानी का भरिया वगदा है, उदे किनारियां तो पानी उछल के नीचे इधर उधर टोयां विच गड़ियां दे विच जा डिग गया। थोड़ा पानी होन करके बड़ी देर तक खड़न करके उथे डंगर पशु फिरदे हन, ओ पानी बदबू मारन लग जांदा है, जी पैदा हो जांदे हन, होर कई किस्म दे नुक्स पैदा हो जांदे हन उस जल विच, जिस नूं कोई पीण तां की उस दे नाल हाथ भी धोना पसंद नहीं करदा। सो क्यों ओ दरिया तो अलविदा होके अगर उस पानी नूं कोई महापुरख कोई भला पुरुष उठा के उसी दरिया विच फेंक देवे सुट देवे तां फिर ओ शुद्ध दा शुद्ध है। इसे तरह ही ए जीव आत्मा अज्ञान वश होके परमेश्वर तो विछड़ जांदी है। हालांकि जिहो जिहा परमेश्वर दा सुभा है सत चित आनंद एहो जिहा ही एदा है, पर उस तो अज्ञान वश होके विछड़ के इनू अनेक दुख तकलीफां आ चिमड़दियां हन, आद व्याद उपाद आ चिमड़दे हन, आशा तृष्णा चिंता तिन देना आ चिमड़दियां हन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंज दूत आ चिमड़दे हन। ए कदों चिमड़दे हन जदों परमेश्वर दी होंद तो मनुख दूर हो जांदा है, ते जे कोई महापुरख कृपा करे उस पानी नूं फिर दरिया दे विच चुक के सुट देवे परोपकार करे तां फिर ओ पानी फिर निर्मल हो जांदा है। इसलिए हजूर कहंदे हन भाई जपन वालियां दी संगत विच तैनू ही नाम मिठा लगन लगेगा, क्योंकि गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, होर किसे जूनी विच तू जप नहीं सकदा, एहो ही तेरी बारी है। जपन वालियां दी संगत कर, भले पुरुषां दी संगत कर।

आके गुरु की बाणी श्रवण करदा है, प्रभु दे गीत गांदा है। बाणी द्वारा इस मन ते चोटां पैंदियां हन ना जदों, ता फिर मन जुड़ जांदा है ईश्वर दे चरणां विच, ते फिर ऐसा जुड़दा है जिस तरह ध्रुव भगत दा मन जुड़ गया सी, प्रहलाद भगत दा मन जुड़ गया सी। इस लई भाई मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है, भई प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की, एहो तेरी बरिया ते किवें मिलिया जा सकदा है। आख्या सत संगत विच जाके अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी सिफत सलाह कीतियां ओ मिल सकदा है। किसे सोने चांदी दे वटे ईश्वर दी प्राप्ति नहीं हो सकदी। कबीर जी कहंदे न कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, आप दे बराबर सोना भी दान कर देवे ना, जितना तेरा वजन है उतने वजन दा सोना दान कर देवे, ते कवे मैं प्रभु दी प्राप्ति कर ली है जां प्रभु दी प्रसन्नता प्राप्त कर ली है, कदे नहीं मिल सकदी। आख्या ए तां उदी प्रसन्नता लई उदे गुण गाउने पैणगे, आपा देना पएगा। कबीर जी कहंदे न कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, आख्या फिर तुसी किस तरह राम नू मोल लै ले। आख्या मन दे राम लिया है मोल, अपना मन दे दिता है ते फिर जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा हो। जब हम होते तब तू नाही, जदों मैं है हंकार है तो परमेश्वर नहीं है, ते जदों भाई आपा गुरु दे अर्पण कर देवेगा, अहंकार गुरु नू अर्पण कर देवेगा, ते फिर तैनू गुरु प्राप्त हो जानगे। मुंह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाउ वढाई विचार। तो इस लई भाई ए मनुच्छा जन्म जप जप के सिमरन करके सेवा करके ही सफल हो सकदा है, ते जिन्ना ने सिमरन नहीं कीता सेवा नहीं कीती ओ बेशक खांदियां पींदियां पहनदियां कारो विहार करदियां भी ओ ता एक मुर्दा दे समान हन। मृतक कहिए नानका जह प्रीत नाही भगवंत। इसलिए इस नू जप जप के सफल कर ले। हजूर पंजवे पातशाह बख्शिश कर रहे हन के शुभ कर्म करदियां भी ए अरदास कर जो आप कर रहे हन, जप तप संजम

धरती दी पालना करन वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय दी भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दी जय जांचे संत जन उस गोपाल दी सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

एक धरती एक आकाश दस ए परमेश्वर दा सरायचा है तंबू है इंसान जहाजा ते चढ़ लवे राकटा ते चढ़ लवे कितना भी यतन कर लवे पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता ओदे घर विच बैकुंठ है अते सपत लोक समान पूरी आले ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

मान लिया ते बादशाह कह लगा देखू तेरा हर बीठला ए नामदेव दस मेनू तेरा बीठल तेरा भगवान कित्थे।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, बच्चे समेत ते नाले दूध दिया

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने, दरबारियां ने अपनी कीमती सेजा नामदेव दे अगे धरी ते बेनती कीती, बादशाह बादशाह सलामत दी ए इच्छा है, ए कीमती सेजा तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती सेजा चुकी ते नदी विच सुट दिती, दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा दरबारियां दे नाल। फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसल्ली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पे।

भक्त नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत बाणी बोली मिठी हो जाती। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नू

गुरु दयाल हो जाए, देहोरा फिरे देवरा कंदिन मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा है। नामदेव जदो पंडता ने नीवी ज्यादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता। तो भगत जी कहंदे ने अगर वो दयाल हो जाए

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकट वर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे है करी, सर्व व्यापक अंतर अरे, प्रणवै नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणवै नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड।

कहीं राज पूले कहूं पवर हो के भली पात पूले कहूं फूल हो के भली राज पूले कहूं भवर हो के भली पात कहूं अश्व हो के बह बेग ऐसे कथो मैं न आऊ कथो तो है कैसे कहूं मैं आऊ कथो तो है कैसे कथो मोर।

मानस जन्म अमोलक पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो कौटी बदला काथूरी को गाहक आयो, लाद्यों का निर्भिक जिवा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगावी क्यों पुर्ज पहाड़, मोहन ठगावी क्यों

बिरला जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली